0: पुत्र ठीक ठाक हो और सुनाओ सब जी ठीक ठाक हो
1: ना नुसु दे बोझ ना कानिस तीपोता και όταν κάνεις κάτι καλό.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.